0: की क्षमता में बने दे बाहर जो माता से रहता थे फल नो नियो बोले अफेयर का जो बता साउदी बाकुंडा से ना पूजा बक्की ने पिसल
1: Ovintis, nemak informasau balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.